0: हमारी web.com की पेशकश।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: इट्स 9 टैंजेंट इज ब्रॉट टू
1: डी और खारिज के लिए मुफीद है। दीजिए।

0: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरा मुला जारी साल से वन क्वेश्चन जो हिस्सो हो दौरे के अमेरिका सा गडण वाले खबरों बेबुनियाद आन पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है एक तरफन पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद ना हूं वे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राविच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर पर ईरान जो दौरो करण वाले खबरों के रद्द करते हैं तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटताई वाले पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सो हो पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गाल तैयार है अफगानिस्तान के पंजी सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे के रोकणो पवंदो कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पुची हो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल सानी जो तेहरान पुचण से परदेही वजीर अब्बास इराकी आदुर भाव किया मुलाकात दौरान बतरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल कतरी वजीर आजम ईरानी सदर स्पीकर अस्करी क्यादत से मुलाकातू भी कंदो अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गाल आबना और मुझे बहाली वो मामलो भी गौरे ठीक

0: मुझे तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो मेरा ऐसा करा जाता है सिर्फ मेरे चीजें के लोग क्या चाहते हैं, चीजों के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव क्या है, हम सब देखेंगे असेंबली का व्यू अपना क्या है। सुबह की आवाज की गाड़ी थी चेयरमैन अलाउन होते हुए भाई साहब कह सकते हैं जो इस मुल्क की आवाज चाहे जिसके लिए होगा ये लोग आपके किसी और के कहने से काम है सिर्फ असेंबली छह दफा एक दस पास और आप भी जानते हैं कि फरवरी 2025 में बड़ी डिजिटल खराब था जिसमें अगर आपके फंड में उत्तरी बाल की सिंध जो मानूम जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी के लिए आए जो कि करें तो चला सही असर ताकत नहीं पाए अभी
1: तंहिंजी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो नवनि सूबनि बाबति जंहिंखे शोक आहे ठहराउ आणे सिंध सिबली छह भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि ख़बर आहे सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो मुंहिंजी या अव्हां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो वॾे वॾे इंस्टीट्यूट लहल बोल चयो त मकानी निज़ाम इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण लाइ पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि पेमस अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक़ियो इंतिहा दिल ॾियारींदड़ आहे मुल्क में अस्पतालुनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे त इन जो आसान जवाबु इहो आहे हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे, ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर खुराक लगान।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। उदंदा रहो, उदंदा रहो।
7: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
9: قل من يرزقكم من السماء والارض کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے تم جو اللہ کے سوا دوسروں کے وفادار بنتے ہو بتاؤ تمہارا خیر خواہ کون ہے تمہیں رزق کون دے رہا ہے آسمان سے یا زمین سے ام من یملک السماء والابصار یا کون مالک ہے سماعت و بصارت کا یہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں ومن یخرج الحی من المیت کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے ویخرج المیت من الحی اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے وفادار بنے ہوئے ہو اور دوسروں کے اطاعت گزار ہو دوسروں کے آگے جھکتے ہو اہل مکہ کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو سمجھتے لیکن اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے فذلکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ رب تمہارا حق برحق سچا

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: Ek mazboot Pakistan ki buniyad hamare sehatmand bacche hain. Polio bachchon mein umar bhar ki mazoori ka sabab ban sakta hai, magar isse bachao mumkin hai. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कया वञनि। पिम्स में गुलन जहिड़ा 14 ॿारनि जो मौत करप्शन ऐं नाहेली सबबु थियो आहे। उहे हिकु इस्पताल बि ठीक तरीक़े सां हलाए नथा सघनि। ॿुधायो वञे त पिम्स इस्पताल में हिफ़ाज़ती उपाउ छो नथा वरिता विया। पाक फ़ौज कुवैती हथियारबंद फ़ौज खे तरबियती ऐं सरहदी दिफ़ा में मुआमनत फराहम कंदी। पाकिस्तान ऐं कुवैत दिफ़ाई मुआहिदे 2026 ते सहियूं करे छॾियूं। कुवैती दिफ़ा वारे वज़ीर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम ऐं दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा मोहम्मद आसिफ़ दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं। नए मुआहिदे तहत पाक फ़ौज कुवैती हथियारबंद फ़ौज खे मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार फराहम कंदी। कुवैती दिफ़ा वारे वज़ीर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात कई। ॿिन्ही अॻवाननि पारां ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि दिफ़ाई सहकार खे वधीक मज़बूत करण वारो अज़म जो वर्जाउ। कुवैती वफ़्द पारां ख़िते में अमुन ऐं इस्तक़ाम जे क़याम लाइ पाक फ़ौज जी कोशिशुनि जी साराह।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी थिए थी हाणे का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे कराए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लगी।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
4: सुबह की

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
3: अक्सर मान जो सवाल हूं असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा रिस्क हुंदा है पूरो सुबो वैक्सीन कै उम्र जे पोलियो लगी सके तो कै उम्र जे रेशियो वधी क 10 साल के घटा तन जे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 11 AM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से ना

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Urea Granular. मिट्टी है जो

वधीक वेझो आया आहिनि। मुआदे सां खिते में बि अमुन इतिहाद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे भाई वार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तिसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइण घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिरनि जे वफ़द बि सऊदी मोकिलण जो ऐलान कयो।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दौरे से आयल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शागिर्दन की मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलों से खिते दुनिया में अमुन इस्तेकाम ए खुशहाली के हथी वठाण लाए कयल कोशिशन ते ख्यालन जी लेवट कई है। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नौजवान की तालीम हुनर कारोबारी सलाहतन ए हकीकतन ते बदल सोच की अहमियत जोर दिनो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो है तेजी से तब्दील थन्दड़ गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवान के सोशल मीडिया है।

0: प्रोपोगेंडा जे असरनि खे समझंदे मुस्बत ऐं पाक मक़सद किरदार अदा करणु घुर्जे। मुलाक़ात कंदड़
1: An actuary is

आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड अॼु थींदी। कानून साज असेंबली जो इजलास अॼु थींदो। नून लीग पारां बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़द। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानीअ ते ख़दशा आहिनि।

कराची जे वापारी नीरजा केस जी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छी। मीरजा जा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरजा जे वालिद केस जी जांच ते बेदमादी जाहिर करे छी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह

0: का इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सके तो न वरी वो वजीर अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से कमीशन के रवायती अंदाज में न हलाइंदासी। कमीशन अवां के समूरन सवालन जा जवाब गोलन की कोशिश कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी कारी की है ते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एज़ाज़, तहज़ीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ॾाढो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: जी एफ सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

तू मुस्कुराए दिल के चुराए, तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे। तू दिल तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे। जदे दिसण जी मुंह कई कोशिश लिखी वे, जदे दिसण जी मुंह कई कोशिश लिखी वे, मुझे सुकून तू ही फिटाए हलियो वे। तुझे हुस्न रमज के समझी नथो सगा, तुझे हुस्न रमज के समझी नथो सगा, मुर्की अखियों अखियों सा मिलाए हलियो वे।

मुंहिंजा मिठा साईं जेके बि मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहियो त तव्हांखे मां ॿुधायां जीअं मोरो एफएम एटीअ जी लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं वञण कयो वेंदो आहे जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस। अच्छा हाणे मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो अथव आसान अथव। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, ए मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। छा ते मोकिलींदा? 888-1 ते हुन ते लिखी करे मोकिलींदा, मूंखे तव्हांजे मैसेज जो बि इंतज़ारु रहंदो। त मुंहिंजा मिठा चवंदा आहिनि त ज़िंदगी किराए जो घर आहे। असां हिन दुनिया में अहिड़ी तरह ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं ॼण त हमेशह हिते रहणो हुजे, हालांकि हक़ीक़त उहा न आहे। हक़ीक़त हिन दुनिया में असांजो क़याम रुगो कुझु ॾींहनि जो आहे। नंढपिण खां वठी जवानी, जवानी खां पोइ पोढ़ाइप ऐं पोइ वरी हिकु ॾींहुं ख़ामोशीअ सां हिन दुनिया मां मोकिलाए वञणो आहे। ज़िंदगी जो सफ़र बसि एतिरो ई अथव। पोइ ताक़त, गुरूर, दौलत, ख़ूबसूरती, दुनियावी मसरूफ़ियातूं आख़िर कहिड़े कम जूं आहिनि? जिस्म जंहिं ते अॼु असां नाज़ करे रहिया आहियूं हिकु ॾींहुं उहो कमज़ोर थी वेंदो, जंहिं माल खे गॾु करण में असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी लॻाए छॾी आहे न, उहो सभु कुझु हिते ई रहिजी वेंदो। ऐं जिन माण्हुनि ख़ातिर असां पंहिंजे रब खे नाराज़ कयो, उहे बि हिकु ॾींहुं असांखे छॾे हलिया वेंदा। वक़्तु वापसि नथो अची सघे, पर तौबनि जा दरवाज़ा अञा बि खुलियल आहिनि। अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, हुन जे करे जेतिरी तौबा थी सघे ओतिरी करणु घुर्जे। अॼु बि मौको तव्हां वटि मौजूदु आहे, असां पंहिंजी ज़िंदगी जो रुख बदिलाए सघूं था। निवास खे मज़बूती सां करियो, क़ुरान पाक खे साउन सां पंहिंजो तालुक खे जोड़े छॾियो, जेके वालदेन आहिनि उन्हनि जी क़दुरु करियो, माण्हुनि जा हक़ अदा करियो, दिलनि मां गुरूर तकबुर कढी छॾियो ऐं अल्लाह ताला सां पंहिंजे तालुक वधीक मज़बूत करियो। यादि रखो, हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। छा हीअ दुनिया मंज़िल नाहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। असल कामयाबी उहा नाहे त असां दुनिया में केतिरो कमायो, केतिरी दौलत गॾु कई या केतिरी शोहरत हासिल कई। असल कामयाबी उहा आहे त जेकॾहिं असां हिन दुनिया मां वञूं तॾहिं असांजो रब असां सां राज़ी हुजे। हिकु ॾींहुं अहिड़ो ज़रूरु ईंदो जॾहिं न मोबाइल हूंदो, न पैसो हूंदो, न कारोबार हूंदो, न शोहरत हूंदी, न नालो हूंदो, न दोस्त हूंदा, न मिट हूंदा, न माइट हूंदा, केर बि न हूंदो, सिर्फ़ माण्हू अकेलो हूंदो ऐं असांजा अमल असां सां गॾु हूंदा। तंहिं करे उन खां अॻु जो ज़िंदगी जो जेको सफ़र आहे न उहो ख़तम थी वञे ऐं पंहिंजे रब सां तालुक मज़बूत करे वठो, पंहिंजे दिलि खे जाग

अल्लाह ही हलाक किया करो, दुख न किसी को दिया करो। इहो ही जो मैसेज आहे, इन ते ही अमल कजो। इंशाल्लाह ताला तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी कामयाबीअ सां गुज़ारींदा। दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा। हलूं गुरदूरो भेण खां शौकत अली भेण जो पहिरियों मैसेज मुंहिंजे प्रोग्राम में आयो आहे। अदा सां गॾु आहे नादिर अली भेण, अली गुल भेण, ऐं चवंदा अदा गुलाब सलाम। वालेकुम सलाम मुंहिंजा मिठा ताजन। चवंदा शाहिद बाबा जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हांजो पहिरियों मैसेज असांजे प्रोग्राम में आयो आहे। ज़रूरु तव्हांखे शाहिद बाबर जे आवाज़ में कलाम ॿुधाईंदुसि, इहा तव्हां गैरंटी समझो। ऐं ज़ुल्फ़िकार भेण जेको आहे न, उहो उन सां गॾु आहे, डेडिकेट करे थो ज़ुल्फ़िकार भेण खे ऐं ज़रियाब भेण ऐं रियाज़ अली भेण खे। वॾी महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। तव्हांजा लख कुर्ब, लख अहसान, तव्हांजे लाइ खोड़ सारी मोहबतूं, खोड़ सारो प्यार आहे। ॻोठ हाजी दलेल ज़रदारी खां सावर खान ज़रदारी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चयो त सर सलाम। त वालेकुम सलाम ज़रदारी साहब, कहिड़ा हाल आहिनि अवांजा? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे अवांजी? ऐं अदाजन चवनि था मुमताज़ लाशारी जी कलाम असांखे ॿुधायो था। मुमताज़ लाशारी जो अॼु मुंहिंजी प्ले लिस्ट में ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, इंतज़ार कजो, ज़रूरु ॿुधजो हुनखे, ऐं तव्हांखे ॾाढो इनशाला पसंदि अची वेंदो। ऐं डेडिकेट करे थो भूरो ख़ान लाखो ऐं ग़ुलाम सरवर भागाई खे। अदा भूरो ख़ान लाखो असांजो पुराणो लिसनर आहे बहितरीन, ऐं ग़ुलाम सरवर भागाई बि ईअं ई साॻे तरीक़े सां असांजा लिसनर आहिनि। वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। ॻोठ हाजी ग़ुलाम अली ख़ासि करे लॻ जींदो मौरीअ खां क़ुर्बान अली ख़ासि खे ॿुधे पियो। अदा क़ुर्बान, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? मां क़ुर्बान वञा थो, तव्हां ख़ुशि आहीं, तयार आहीं, तबियत सही अथई, उमेद आहे त अलाह ताला तव्हां बि बिल्कुलु ख़ैर ख़ैरियत कई हूंदी। ॻोठ

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 11:30. This time check is
2: ये तो आए डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बना स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले।

0: अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मोरो
3: नौशहरो
2: मीरपुर खास
3: लाड़काना
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क।

नकर तू याद गेरन के गमन के किए जले छजे नगर तू याद गेरन के गमन के किए जले छजे न रोए तू बेवफा जे लाए अखिन के किए जले छजे अचे आराम तो जिनके प्रिय जे नाम सा दमदम अचे आराम तो जिनके प्रिय जे नाम सा दमदम उन्हन अज बेसहारन ई दुखन के किए जले छजे दिसो अज चोट ते बिही सदिन था सू हवारन के दिसो अज चोट ते बिही सदिन था सू हवारन के पुकारिन था उथी सिकमा चपन के किए झले छजे शर्कमशर बेगम एक दफ़ो बीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजे मिठनि प्यारनि दोस्तनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में भली कहा त जन जन दोस्तनि हाणे असांखे न जॉइन कयो आहे जन हाणे पंहिंजो रेडियो सेट ऑन कयो आहे त ऐं पहिरियों दफ़ो असांखे ॿुधी रहिया आहिनि त हुननि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां ॿुधी रहिया आहियो GFM नेटवर्क ऐं हीउ प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती ऐं जेको GFM नेटवर्क जे समूरनि स्टेशननि तां हिकु ई वक़्तु ऑनियर कयो पियो वञे ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण त हीउ प्रोग्राम हफ़्तेवार प्रोग्राम हूंदो आहे हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे जंहिं में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां जा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं उन खां अलावा तव्हां जे पसंद जी चूंड मौसीकी त दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं महबूब अली पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो मोरो शहर खां अदा महबूब साईं कहिड़ा हाल अथई ठीकु आहीं तबियत सही आहे तुंहिंजी उमेद अलाह ताला तोॾे खेरे त कई हूंदी ऐं मोरो खां तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो उन जे लाइ खोड़ सारियूं खोड़ दफ़ा तव्हांखे मां भली कार चवां थो

त असां सां गॾु आहे पंडीतन खां अस्मा। अस्मा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे अव्हां जी? पुराणियूं लिसनर्स आहियो असांजूं ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थींदा आहियो। मुंहिंजे तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे हिक न, ॿ न, टे न, चार न, पंज दफ़ा भलीकार, बल्कि पूरे हफ़्ते जे लाइ भलीकार, सत दफ़ा भलीकार। ऐं अस्मा चवे थी त सर, शो बहुत अच्छा है आपका, महिरबानी, तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे। ऐं उमेद आहे त इन खां वधीक अञा जी एफ एम नेटवर्क ते तव्हांखे शो ॿुधण जे लाइ मिली वेंदा। घोटु उमेद अली दरदारी खे गुलाम सरवर बाघाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर सलाम, ख़ुशि हूंदो, अलाए अहसान आहिनि, किरोड़े ठीकु ठाक सॉन्ग जेको आहे न उहो अधे भूरे इलाइक़े खे।

आज जा मान लाल सिरोड़ के मेहरबानी में जमी चाहता तवा असि प्रोग्राम में शामिल थे आयो तवाजू मोहब्बतू आन तवाजो प्यार आए रोड़ी सकर का नजीर अहमद मंगरियो पान के बुझी रो है अदा रोड़ी यारा भा कड़ा हलन तवाजा ठीक है तबियत सही है अवजी उम्मीद है अल्लाह ताला तवाजे खैरियत करें हफीज सोलंगी पुटा मोरू का प्रोग्राम बुझी रो है अदा हफीज कड़ा हाल अथई ठीक है पुट चवे तो अदा सलाम में काफी टाइम से एफ एम सुनता हूँ मगर SMS पहली बार कर रहा हूँ मेरे तरफ से आपको और आपके पूरी टीम को और सब अपने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम जी हाँ अदा वालेकुम सलाम तमाम सा पुराना लिसनर रहे हो पर मैसेज तुम पे दफो कह अदा हाफिज मैसेज कंदा कह शामिल थींदा कयो इन सां छा थींदो आहे त हिकु त जेको प्रोग्राम कंदड़ आरजे हूंदो आहे उनखे ख़बर पवंदी आहे त मूंखे कहिड़ा दोस्त किथां खां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं केतिरो असांजे हिन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कनि था उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त तव्हांजी ख़ुदि जी सुञाणप बि थींदी आहे तव्हां पंहिंजा जेके बि असांजा लिसनर्स हूंदा आहिनि न तव्हां इहो न सोचियो त सिर्फ़ असांखे मोरो ॿुधी रहियो आहे हिन वक़्तु असांखे पूरी सिंध ॿुधी रही आहे पूरी दुनिया में किथे बि जेको आहे न माण्हू असांखे असांजी वेबसाइट जे ज़रिए ॿुधी रहिया आहिनि त उन्हनि सभिनी में हफ़ीज़ अहमद सोलंगी फ्राम मोरो उन जो नालो ओसोड़ी पहुचे थो इन जे करे तव्हां प्रोग्रामनि में शामिल थींदा कयो तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां 10 दफ़ा भलीकार ठीकु आहे ऐं अदा जन चवंदा त असांखे फौजिया सुमरे जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर फौजिया सुमरे खे ज़रूर पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं त मुंहिंजा मिठा साईं मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसास आहे न जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे छा मोहबत दुनिया जो ख़ूबसूरत अहसास आहे जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे जॾहिं कंहिं शख़्स सां सची मोहबत थी वञे थी न त उन जी ख़ुशी पंहिंजी ख़ुशी महसूस थींदी आहे उन जो ॾुख पंहिंजो ॾुख लॻंदो आहे ऐं उन जी मुस्कुराहट बि पंहिंजी मुस्कुराहट लॻंदी आहे उन जी मुस्कुराहट ज़िंदगी जी सभ खां वॾी ख़ुशी बणजी वेंदी आहे सची मोहबत इंसान खे ख़ुदगर्ज़ीअ खां कढी कुर्बानीअ जी राह ते आणे बीहारींदी आहे कंहिं शख़्स जी मोहबत में पाण सदको करण जो मतिलबु उहो न आहे त इंसान पंहिंजे वजूद इज़त या ज़िंदगी खे ख़तमु करे छॾे न मुंहिंजा जानी उन जो असुल मतिलबु उहो आहे त पंहिंजे महबूब जी ख़ुशी इज़त ऐं सुकून जे लाइ पंहिंजी अना ज़िद ज़ाती ख़्वाहिश मां कुझु क़ुर्बान करण ऐं मोहबत में मान जी जाइ ते असीं मोहबत में मां जेका असां चवंदा आहियूं उन जी जाइ ते असीं अची वञे त रिश्तो वधीक ख़ूबसूरत बणजी वेंदो आहे मोहबत में क़ुर्बानी ॾियण हिकु वॾी ख़ूबी हूंदी आहे पर उहा क़ुर्बानी ॿिन्ही तरफ़नि खां हुअणु घुर्जे जेकॾहिं हिकु माण्हू हर वक़्तु ॾिए ऐं ॿियो रुगो वठंदो रहे त उहा मोहबत आहिस्ता आहिस्ता हिकु तरफ़ी वाबस्तगी बणजी वेंदी आहे सची मोहबत में ख़्यालु इज़त वफ़ादारी क़ुर्बानी ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां हुजणु तमामु घणो ज़रूरु मोहबत बनाइण बनाए थी कमज़ोर नथी करे जेकॾहिं कंहिंजी मोहबत तव्हांखे पंहिंजी ज़ात खां नफ़रत करणु पंहिंजे ख़्वाबनि खे दफ़न करणु या हर वक़्तु ॾुख बर्दाश्त करण ते मजबूर करे थी न त उते मोहबत सां गॾु सोचण जी बि ज़रूरत आहे छो त सची मोहबत में क़ुर्बानी ज़रूरी हूंदी आहे पर पाण खे विञाए छॾणु ज़रूरी न आहे हूंदो रऊफ मक्सीअ जो ॾाढो हिकड़ो ख़ूबसूरत सॉन्ग मुंहिंजे प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे अचो त हुनखे इंजॉय

0: अपनी से रिश्ता जोड़ो, सुनते रहो जी एफएम 88.8 मोरो की आवाज़।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जी एफएम 88 की आवाज़।
1: जी एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
3: तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
6: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क।

प्रोग्राम में दोस्तों मैसेजेस भी गुड शामिल कंदा हलंदासीं तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी भी ॿुधाईंदासीं तव्हां सां मिठी मिठियूं ॻाल्हियूं बि असांजो जारी वसारे रहंदो त कॾाए तव्हां ख़ुशि आहिनि तव्हांजा ठीकु आहिनि उमेद ख़ैरियत कई हूंदी अदाजन चवंदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा भाउ चवंदा भाईजान आपका प्रोग्राम नाइस है महिरबानी अदा तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम खे पसंदि

भेण खे ऐं रियाज़ अली भेण खे वॾी महिरबानी मुंहिंजा मिठा। तव्हांजो ही ॿियो मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हांजा लख अहसान तव्हांजा ऐं स्पेशली मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे मां भलीकार चवां थो। त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रे SMS। SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आसान। पंहिंजी मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This project is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Mufeed hai. Prickly Heat. Door se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: See you by
7: Sona Yulia Granular.

ॿे मुसबित ऐं बा मक़सद मुलाक़ात कंदड़ शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुक़ु रखियल हुया। इस्लामाबाद जे पिम्स में पेशारी वज़ीर आज़म पारां जुड़ियल कमेटी पिम्स जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत ॿियनि जा बयान कलमबंद करे वरिता। पोती ॿारनि जे वारसनि खां बि बयान वरिता विया। जांच कमेटी वज़ीर आज़म खे अॼु छुराती रिपोर्ट पेश कंदी। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड अॼु थींदी। नून लीग जे नामज़द वज़ीर आज़म बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौरु नामज़दगी फार्म जमा कराए छॾी।

0: वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल के टक्कर हादसे सबब चार मुसाफिर फोत एक जख्मी फोतन में खानचंद पुट रामचंद हाकिम पुट शेरल ओड पुट रमेश भाटियो फोतन जा लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल किया पुलिस मज़दा ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। कोटड़ी की बरसा कारगो लोड रक्षा वाह में किरण सब बार की गोला जारी बुढ़ी वेलन में रुगो लाश हथ बारह साल मीर मोहम्मद यारह साल मुंतजर ए तेरह साल जुनेद गोपांग की गोला जारी गुजर डी मीरवा किना लिंक रोड तां कारगो लोड कंट्रोल में निकरी वाह में किरी पयो। में सीटीडी के असाज इदारे से गडियल कार्रवाई पाबंदी मरल तंजीम सिपाह मोहम्मद जो टारगेट किलर गिरफ्तार सीटीडी मूजिब टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदी के दौरान गिरफ्तार किया वो टारगेट किलर्स केतर ही कतल के केसन में भी घुर्बल हो। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ मुख्तलिफ शहर में सियासी तंजीमों जहा मुजाहरा पटीदन में कौमी अवामी तहरीक पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाज किया कंदकोट में जसकम सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली कढ़ी अगवाणन तो सिंध एक आए हमेशा राधण भरसा गोठ जाम जरदारी में जरदारी बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थी पियो जरदारी बिरादरी के एक धुर पारा राधण नव गोठ रोड से मुजाहरों कर धरण आयो एहतजाज कदर इल्जाम आयो तो मुखालिफ धुरवार असा घर से हमलो कर तशद किया जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ कई वे। जमाल शाह में रोड हादसे में मुलविस मज़दा के पुलिस पारा छड़ने खिलाफ मुतासर शहर जो एहतजाज पुलिस से मज़दा का पैसा वठी छड़ने जो इल्जाम मुजाहरीन मुझे मज़दा के टक्कर में बनी घर फोत थे पुलिस हिरासत में वरतल मज़दा रिश्वत वठी छड़ी है जवाबदार ड्राइवर खिलाफ कार्रवाई कई वे। सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरी अज राखी जो मजहबी दिन मल्हाए रही है भाव ए भेण के रिश्ते के वधिक मजबूत बनाने लाय भेनर भायरन के राखी बधी रही हैं जडे त भायर भी भेनर के तहफुज वारो वचन वरजाए रहा है राखी जो दिण हिंदू धर्म के आम दिणन में एक है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पोलियो कतरा पी मुंजो नालो प्रवारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस आर जीपीएन अचे थी जो उनमें काब सुई इस्तेमाल न थी बगैर के दर्द जे वैक्सीन जेका पांजे बार के करायो तो जी असा जो पाकी जेके महफूज
4: सिंध की GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: पर पोलियो होने के बाद उसका से बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है, हमारी हेल्पलाइन पे बात करें।
1: फॉस्फोरस की कमी तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: वेलिकात प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जीएमओ एफएम एचजी जे लाइव स्टूडियो में ऑन ईयर के पे वने जे भी मां तमा जो पांजो आरजे गुलाब खान बेण तमा सा गदाया आई न सिर्फ जीएमओ एफएम एचजी जे असने प्यारा भाईर बुझ रहे हैं असा के पर असा के जीएफएम नेटवर्क जे समूर स्टेशनन वाला जेके सजा दिलबर दिलबर लिसनर्स आइन प्यारा प्यारा लिसनर्स आइन मीठा मीठा लिसनर्स आइन वे समूरा इन वक्त असा जे इन प्रोग्राम के बुझी रहा आइन। हाँ मीरपुर खास वारा अलाए कि हलिया वाया खबर ना अज मीरपुर खास वारा जो मैसेज अजा थोड़ी मुख्य रिसीव थो है मातली में भी असा मैसेजेस इंदा हुआ वो यार भी असो अलाए कि हलिया वो है सकरट वारा भी घुमन बाकी मोरू और सखर वारा पान मल्हाए रहा है निभाए रहा है बाकी दिसूं था असा जे बया लिसनर्स किथे उन गोगे तवा के यो मैसेज कर जो तरीकेकार बुधाया खास तौर से उन मान जी अस वक्त ताजो भी बुझ रहा या उ असा भाईर भेनरू जो इन वक्त असा दौरान सफर बुझी रहा है तो उ जरूर मुख्य मैसेज कर बुधाएन तेदा का उन सफर जारी वसारी है दौरान सफर हु पांजे गाड़ी में कार में बस में जिथे भी बुझी रहा तो वे बुधन पसंद कन था यकीन के तुम मैसेज मुख्य रिसीव थोड़े तक वो कलाम जरूर बुधाईस जो दौरान सफर बुधाईदा भले तेजी गाड़ी जो आवाज फुल कर छो न सिर्फ तमाम बल्कि सभी के वो VIP सॉन्ग बुधाजो सॉन्ग की जी फरमाइश कर वो सिर्फ पाकिस्तानी हुए इंडियन सॉन्ग को भी न हो जो इंडियन सॉन्ग नॉट अलाउड है पाकिस्तानी कड़े सॉन्ग की तुम फरमाइश कर सो जो तक अस बुधाई तो हाँ तुम कड़े तरीके से मुखा यह फरमाइश कर सौ पांजी मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में वही MRO लिखो स्पेस के स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजे गोठ या शहर जो नालो लिखी कर मोकलो अस 888-1

जलाल जोगी जी खूबसूरत आवाज़ है तवाजी सुंदर समातू। अच्छा ही जलाल जोगी जी जी फरमाइश मुख्य कई हुई नदा उमेंद अली जरदारी जी गोठ का गुलाम सरवर बागा ही कई हुई तो मुझे मीठा सही तवाज ना ही स्पेशल सॉन्ग मां करे छो है वही मेहरबानी है तवाजी तो प्रोग्राम में कुछ दोस्तों ने मैसेजेस भी आने वे शामिल कर हलूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो वेरी नाइस है। अच्छा ठीक है मेहरबानी मुझे भा तह मुझे शो पसंद अचे पे उन लख लखान तवाजा असा गड है केर खबर आ मोहम्मद तैयब थेबो गोठ जो नालो है उतार का अदा हबीबुल्ला थेबो अस गए अदा हबीबुल्ला की है ठीक है वे सही है तवाजी तक प्रोग्राम स्पेशली भली कार चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच गोठ उमेद अली दरदारी का गुलाम सरवर बागा ही प्रोग्राम बुझी रहा है गुलाम सरवर तसो कलाम ऐसो प्ले कर थैंक यू वेरी मच खुश थी हूं उम्मीद है यो सॉन्ग पसंद आयो हों चवे तो अल्लाह कद खुश हों मेहरबानी मुझे मिठा साई इन दुआओं कंदा रहो मुख्य दुनिया में अगर सब का जरूरत है वह है दुआओं की जरूरत तड़े तरीके से दुआ कंदा रहो मेहरबानी तवाजू डेडिकेट कर पो सावल खान जरदारी भूरो खान लाखो के मेहरबानी मुझे मिठा मौला तक आवाज रखे खुश हो पन्नो आकिल खान सैयद इमदाद अली शाह पांच प्रोग्राम बुधे पे चवे असलम भाईजान वालेकुम असलम अदाजन जो ही शायद बो मैसेज है चे तो आपका प्रोग्राम नाइस है मुमताज मौलाई का ममताज मौलाई जो कलाम असा बुधा जो डेडिकेट करे तो ताहिर लुणई रियाज जिस कहानी के अच्छा अदा अब्दुल हफीज मोरू खां असा मैसेज किया अदाजन फरमाइश कई तो मुख्य तवान बुधा फोजा सुमरे के आवाज में कलाम दादा पहले दफो तुम मैसेज किया करे दिल से तहे कलाम हालांकि फोजा सुमरो जो आवाज ढो प्यारो है न सिर्फ तवाज पसंद है पर इलाही सिंध भी मानू उन तमाम घणो पसंद कन्दा कलाम के भी अड़े तरीके से पसंद कन्दा इंजॉय कन्दा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा।

0: पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर मां जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल तो थी दिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल के घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बि कंहिं जे लाइ मेहनत कई वञे। हर मोहबत जो इज़हार लफ़्ज़नि सां नथो थिएव, कुझु मोहबतूं ख़ामोशीअ सां मेहनत इंतज़ार ऐं क़ुर्बानी में लिकल हूंदियूं अथव। ज़िंदगी में अहिड़ा लम्हा बि ईंदा आहिनि, छा ज़िंदगी में अहिड़ा लम्हा बि ईंदा आहिनि जॾहिं दिलि रोईंदी आहे, इंसान मुस्कराए दुनिया खां बीह पवंदो आहे। अंदरि इश्क जो तूफ़ान हूंदो आहे, पर ॿाहिरि ज़िमेवारनि जो सुकून ॾेखारणो पवंदो आहे। शायदि उन खे ई वॾो थियणु चइबो आहे। दिल में कंहिंजी यादि रखणु, अखियुनि में कंहिंजे इंतज़ारु रखणु, पर हथनि सां पंहिंजूं ज़िमेवारियुनि खे निभाइणु, छो त इश्क जा सूर इंसान खे अंदर खां टोड़े छॾींदा आहिनि, पर दुनिया जूं ज़िमेवारियूं खे ॿीहर बीहण सेखारे छॾींदियूं आहिनि। तॾहिं त हिन शायर बि इएं ई ज़ाहिरु कयो आहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।

कमल शर्मा खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में भलीकार कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे। त खानवाण खां वाहिद बख़्श ख़ासि केली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चए थो भेरूं जा मिठासीं। नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हांखे मुमताज़ लाशर जो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदो। गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो अदाजन जो ही ॿियो मैसेज। महिरबानी अदा हबीबुल्ला, लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। रशीदवंत शर राम थी कचे खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं चवे थो प्रोग्राम लाजवाब आहे ऐं सभिनी लिसनर्स खे सलाम चवे पियो। अहमद मुगल जो कलाम जी फरमाइश कई अथसि। अरा रशीद, हाणे ईअं आहे शर साहब, रशीद शर साहब वेठो तूं अहिड़े इलाइक़े में जो ॻाल्हि न पुछ। हाणे ॻाल्हि ई आहे त तोखे नेक्स्ट जेको प्रोग्राम ईंदो न जुमे वारो, उन में तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो मां कलाम इहो ज़रूरु ॿुधाईंदुसि, छो जो हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। अहमद मुगल ॾाढो भलो रागी आहे, न सिर्फ़ अव्हां खे बल्कि मूंखे बि ॾाढो पसंदि हूंदो आहे। महिरबानी।

कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा खे सॼी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर मुर्तज़ा जे वालिद खे सॼी जांच ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं ईंदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थी न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक़ु न आहे। अदालत कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सुवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उन में का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जो पांजे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्ज में जो महफूज रहे।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रो

0: रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा चिकता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं ना कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बजाय सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वारो कम तय थियल मुदत मुकमल करण जी हिदायत। टैक्स चोरी स्मगलिंग ए गैर कानूनी कमनि में मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज करण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सुधारनि जे टीं दौर खां आणण जी हिदायत कंदे चयो त मुल्क तरक़ी लाइ टैक्स वारे निज़ाम में सुधारा ज़रूरी आहिनि। सुधारनि वारो कम बि तय थियल मुदत में मुकमल कयो वञे।
1: डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां पाकिस्तान जे दौरे ते आयल हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल जे शागिर्दनि जी मुलाक़ात। पाकिस्तान जे सिक्योरिटी मामलनि, खिते ऐं दुनिया में अमुन इस्तेहकाम ऐं होशियार करण लाइ कयल कोशिशनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। आई एस पी आर मौजूदु फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नौजवाननि जी तालीम, हुनर, कारोबारी सलाहियतनि ऐं हक़ीक़तनि ते बदल सोच जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेज़ीअ सां तब्दील थींदड़ गैर यकीनी सूरतहाल में सोशल मीडिया ऐं प्रोपोगेंडा जे असरनि खे समझंदे मुस्बत ऐं बा मक़सद किरदार अदा करणु घुर्जे। मुलाक़ात कंदड़ शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुक रखंदड़ शागिर्द शामिल हुआ।

यात्री जे वापारी मीर रज़ा केस जे राज शुरू करे वकील जबरान नाराज कंदड़ कम सभिनी जे साम्हूं थींदो इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे कमीशन करे सघे वज़ीर अव्हां जी दरख़्वास्त जो कमीशन सां तालुक़ु न आहे अदालती कमीशन खे रिवायती अंदाज़ में न हलाए

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक
1: क्रीम 3 दिनों में डार्क स्पॉट एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एंत। इसमें मौजूद फास्फोरस और सेल की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहे। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल छोती डी वे तो असट बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar.
3: Ab aap sunenge GA FM Network.
4: Brought to you.
5: Benullah. Mitiye jo maan.
6: 4 lakh baar mar gaya hai. Aisa ke hal karno kaun? इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल सानह की जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता। फोती बारन के वारसन का भी बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वजीर आजम नवीद तारण है तो जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 70 डीहन में सामू इंदी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई भी थन्दी। वजीर आजम की सुधारत हेठ FBR में सुधारन बाबत हफ्तेवार इजलास। शहबाज शरीफ पारा टैक्स निजाम में सुधारन वारो कम तय थियल मुदत में मुकम्मल करण की हिदायत। टैक्स चोरी स्मगलिंग गैर कानूनी कमन में मुलविस मानून खिलाफ कार्रवाई तेज करण जो हुकुम। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुधारन जो टी दुर का ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत कन्दे है तो मुल्की तरक्की लाय टैक्स वाले निजाम में सुधारा जरूरी आन। सुधारन वारो कम भी तय थियल मुदत में मुकम्मल कर वे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड सैयद आसिफ मुनीर सां पाकिस्तान के दौरे ते आयल। हार्डवर्ड बिजनेस स्कूल के शागिर्दन की मुलाकात। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलन खिते दुनिया में अमन इस्तेकाम खुशहाली कैती वठण लाय कयल कोशिशन ते ख्यालन की डे वट। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नौजवान की तालीम हुनर कारोबारी सलाहियत हकीकतन ते

0: बदनामी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
5: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: गांव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल तो थी डिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: Karim denedi.
1: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पिम्स अस्पताल में बाल लॻण वारे वाके जो ज़िमेवार केरु? वफाकी हुकूमत ॿिए ॾींहं बि 14 मासूम ॿारनि जे सड़ी फौत थियण वारे वाके जा ज़िमेवार ज़ाहिर न कया। थाने जे जांच लाइ जोड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छॾी। अमले खां लिखत में बयान तलब। सीसीटीवी फुटेज बि तहवील में वठी छॾिया। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड चयो आहे त ज़िंदगी जे का बि क़ीमत न आहे। थाने जे जांच बि ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। अॼु शुरूआती रिपोर्ट मिली वेंदी।

0: 3 सेप्टेंबर ते मुल्क पेट्रोलियम लेवी ऐं आई पी एस जा नाजाइज़ मुआहिदा ख़तम कया वञनि। पाउ छो न वरिता विया? पाक फ़ौज कुवैती हथियारबंद फ़ौज खे तरबियत ऐं सरहदी दिफ़ा में मानत फ़राहम कंदी। पाकिस्तान ऐं कुवैत दिफ़ाई मुआहिदे 2026 ते सयूं करे छॾियूं। कुवैती दिफ़ा वारे वज़ीर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला सलीम अल सबाह ऐं दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा मोहम्मद आसिफ़ दिफ़ाई मुआहिदे ते सयूं कयूं। नए मुआहिदे तहत पाक फ़ौज कुवैती हथियारबंद फ़ौज खे मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार फ़राहम कंदी। कुवैती दिफ़ा वारे वज़ीर फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां मुलाकात कई। ॿिन्ही अॻवाननि पारां ॿ तरफ़ा लाॻापन ऐं दिफ़ाई सरकार खे वधीक मज़बूत करण वारो अज़म जो वर्जाव, कुवैती वफ़द पारां ख़िते में अमुन ऐं इस्तेहकाम जी क़यादत क़याम लाइ पाक फ़ौज जी कोशिशुनि जी साराह।
1: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Sayyid Asim Muni visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
0: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमूल लाइ जारी साल से वारियूं कोशिशुनि जो हिसो हो। दौरे खे अमेरिका सां गॾण वारियूं ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि। पाकिस्तान ऐं ईरान जो वापार जारी आहे, हिक तरफ़नि पाबंदियुनि जे अमल करण जा पाबंद न आहियूं। वॾे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे सदर ट्रंप जे नुमाइंदी तौर ते ईरान जो दौरो करण वारियुनि ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटिताई वारे पाकिस्तानी कोशिशुनि जो हिसो हो। पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़ग़ानिस्तान सां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहे। अफ़ग़ानिस्तान खे पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण खे रोकणो पवंदो। कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते तेहरान पहुची वियो। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल सानी जो तेहरान पहुचण ते परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी आदुर भाउ कयो। मुलाक़ात दौरान ॿ तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी सदर स्पीकर ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं बि कंदो। अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। आबनाए हुर्मुज़ बहाली वारो मामिलो बि गौर हेठि ईंदो।
2: अपना क्या है सुबह की आराम से जारी थी। चेयरमैन गुलाम हसन भाई साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाज चाहेगी इसके लिए वो होगा मेरे आपके किसी और के कहने से काम है। सिर्फ असेंबली 6 दफा एक दस पास और आखिरी समय में फरवरी 2026 में वही गिनती के खिलाफ था जिसके खिलाफ फंड में दूसरी बैंक की सिंध के मालूम जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी कही है जो चेक करें और सुबह से सारी ताकत नहीं करने अभी
0: पंहिंजी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। नवनि सूबनि बाबति जंहिंखे शोक आहे ठहराउ आणे। सिंध सिबली 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि ख़बर आहे। सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो, मुंहिंजी या अव्हां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ खोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल, मुराद अली शाह चयो त मकानी निज़ाम इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण लाइ पीपुल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाइद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतिहा दिलि ॾियारींदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालुनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
8: GFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, जीए एफएम 88 नेटवर्क, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्राफ्ट को सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जीजन वेलकम बैक, मेरा पिया घर आया हो राम जी। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाचों की नजर किया और यकीनी तौर पर आप में थोड़ी बहुत एनर्जी तो बूस्ट हुई होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जनाब जब इतना जबरदस्त म्यूजिक चलता है तो ऑफकोर्स एनर्जी का डबल होना तो बनता है। 5:21 टाइम इज राइट नाउ। सखर की ये जबरदस्त सी हल्की फुल्की सी गर्मा गर्मी फिलहाल, और आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। सखर टू कश्मोर, घोट की लाड़काना जनाब और हैदराबाद, मिठी मातेली दादू, पता नहीं कहाँ कहाँ हम सुने जा रहे हैं जनाब। जहां जहां तक सुने जा रहे हैं वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि जनाब आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। लेते हैं जनाब शो की पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो जाता है जब मैं कॉल लेता हूँ तो जनाब मेरे साथ लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर पंगा हो जाता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलें जनाब नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हेलो जी जनाब, कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन बार बार होता है तो बुरा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एनीवे अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हमें आवाज शवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं और इसी तरह आपके साथ रहने वाले हैं शाम के 7 बजे तक, और हम आपको सुनवा देंगे एक और गाना जनाब, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारी चिटचैट करना चाहते हैं, आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ रहें तो बहुत मजे में रहें ना, और जब मजे में नहीं कोई वो बनता, मजे का कोई सीन नहीं बनता, तो फिर हम सीन बनाना जानते हैं, तो चले जनाब हम सीन बनाते हैं आपके मजे के लिए। आपके सुनाते बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव स्लोली, क्योंकि इस वक्त मैं प्ले करने वाला हूं कहानी सुनो जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था। इस गाने को सुनिएगा जनाब, क्योंकि मैं प्ले कर जाऊंगा आपके लिए बहुत सारा जबरदस्त गाना, और अगर आज आपके किसी भी दोस्त की बर्थडे है, किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे जनाब फेसबुक पे मैसेजेस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी विशेष को आपके प्यारों तक पहुंचा दूंगा। डोंट फॉरगेट ऑल

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। आप लेते हैं शो की एक और कॉल। मुझे प्यार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हो?
1: अलहमदुल्ला शुक्र है।
0: जमाल साहब, क्या हाल चाल है? तव्हां ठीक ठाक आहियो? मज़े में आहियो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मूंखे इहो ॿुधायो त अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रियो ऐं जेको आहे गर्मा गर्मी कीअं आहे? शिकारपुर में वधी आहे, घटि थी आहे, छा थियो आहे?
1: गर्मा गर्मी कुझु नॉर्मल आहे।
0: अच्छा, नॉर्मल मौसम हर जॻह ते मौजूदु आहे। मामा जमालदीन भयो साहब, इहो ॿुधायो त अॼु गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था? मुमताज़ लाशारी साहब, बिल्कुलु तव्हांजे लाइ प्ले कयूं था। ऐं कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख़ासि ख़्याल रखिजो। ओके, हमारे साथ है जनाब जमालदीन भयो साहब फ्रॉम शिकारपुर। और आप भी अगर कहीं पर भी हमारी आवाज समाप्त कर रहे हैं तो जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, खैर सा सबनी सागर? जुहेब कटबर लाड़काना से। कैसे हैं जुहेब भाई? ठीक ठाक, मजे में हैं आप?
2: अलहमदुल्ला खैरियत। आप सुनाए कैसे हैं?
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप लाड़काना में?
2: सर बस लाड़काना में तो रोजगार करता हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं हले तो ताजो रोजगार?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: फर्स्ट क्लास हले तो
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ाई वढ़ाई कंदा आहियो सिर्फ कम कार कंदा आहियो?
2: पढ़ाई भी करता हूँ।
0: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त सर। असांखे दुआ में हमेशा याद रखंदा कयो। आमीन। अच्छा जुहेब भाई, इहो त ॿुधायो त मुमताज़ लाशारी थो हलाइण चाहियां अदे जमाल दीन भयो जी फरमाइश ते, त कहिड़े कंहिंखे तव्हां डेडिकेट कंदव?
2: मां दोस्त खे करूंगा, आसिफ चाचर को।
0: जी जी।
2: और ज़ैनुल आबिदीन मुसीब रहमान को।
0: बस
2: बस,
0: चले ठीक है। थैंक यू जुहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लड़काना वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ जनाब, शिकारपुर वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ और बहुत से सिटीज अभी रहते हैं जनाब। लेते हैं चुकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अब क्या होगा?
0: अब ब्रेक का टाइम।
2: तो फिर क्या होगा?
0: तो फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा।
2: अभी 29 हो गया।
0: नहीं, मुझे वैसे ये बताओ तुम ब्रेक के टाइम क्यों आते हो, ये बताओ
2: यार। दरअसल मैं कह रहा हूँ मैं आपके ब्रेक फेल करूँ लेकिन आपके टाइट हो जाते हैं।
0: मेरे ब्रेक फेल करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ।
2: उसके अपने ही ब्रेक फेल हो जाते हैं।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सुनाओ इरफान भाई, कैसे मिजाज है आपकी, आपकी खबड़ी संगत और लाल संगत कैसे जा रही है?
2: मुझे कहते हैं इरफान अली, मेरी कास्ट से वो, और मेरी संगत गुलाबी और मेरी यूसी खबड़ी बेट। आगे बताऊँ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बताएं बताएं।
2: मेरा तहसील साले पर, जिला सक्कर, सूबा सिंध, मुल्क पाकिस्तान, खंड एशिया, दुनिया पानी, आगे जाना है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और आगे कहाँ जाना है ये बताओ?
2: पता है आपको?
0: नहीं।
2: अगर किसी भी जान में लोग सुन रहे होंगे ना, उसने मेरी पूरी डेटा निकाल दी, अब उसको मेरी एड्रेस याद हो गई क्योंकि मैंने दुनिया पानी का भी जिक्र कर दिया।
0: दुनिया पानी का भी जिक्र कर दिया, वाकई ये बात तो है यार कि दुनिया पानी का जिक्र आपने कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अब जो है इंतजार करोगे ब्रेक के बाद?
2: यार करना पड़ेगा,
0: करना पड़ेगा।
2: आज के बाद ना मैं एक चैनल लॉन्च करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंतजार न्यूज।
0: इंतजार न्यूज,
2: कभी भी न्यूज नहीं चलेगी, सिर्फ
0: इश्तेहार चलेगी। चलो थोड़ा सा वेट करो, टाइम चेक का टाइम हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ओके ओके ओके।
3: It's 5:30 PM. This sound check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो।
5: वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैडम, डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजार सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
8: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
7: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
9: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है हमारे को?
1: जो भी दोस्त सुन रहे हैं सबको इरफान अली सेबो की तरफ से बहुत सारा सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू।
2: हमारे साथ जनाब इरफान अली थे, वो खबड़ी भिट से, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है, और जनाब हमारे साथ शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, मुझे सुना के रसा सपनी सा गद नहीं
1: जवार में
2: जवार बचल मोहम्मद शंबाणी साहब, केड़ा हाल चाल आई ताजा नारो की आहे
1: नारो टिकल
2: सफा मां बुधवा का नारे में हाने मगरमच्छ भी निकता
1: है
2: मां बुधो आ मां फोटो डिठा इन अलाए ए आई ते ठेल न लाए छा मना नारे जी का वाह वाह आन उनन में वागू था गुमन हां तो पे थोड़ो ध्यान कदा कियो यार बारन जो पांजो
1: बिल्कुल।
2: हाँ जवाहर साहब ये बुधायो त तमा इन फ्यूचर तमा छा कंदा हो केड़ी त सोच रखी आ त मा हने छा केड़ो काम कंदम केड़ी जॉब कंदम
1: असल में जॉब तत्कालीन घटा है जॉब हने केड़ो बस जे मेहनत मल जाओ तमा।
2: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भली गाल है, ता जी रोजी रोटी में बरकत भी। ये बुधायो मामा जमाल जी फरमाई से मा मुमताज लाशा जो प्ले किया कहे नाले त करना चाहो जी जी चलो ठीक अले वरा लाशारी साहब के भी इसमें सलाम दीजो।
1: वालेकुम
2: थैंक यू जवार बसर शाह साहब जी। जनाब हम प्ले कर चुके मामा जमाल भाइयों की फरमाइश पर ये गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उमर ते पोलियो लगी सके तो कैम उमर ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: All right guys, welcome back once again. एक बार फिर से आपका अपना स्वागत है आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। वेलकम बैक कहते हैं अपने तमाम दोस्तों को और आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके मैसेजेस शामिल शो करते चले। अब्दुल रजाक साहब से बनता ऐसा कि सॉन्ग बुधाओ फौजी सुनो जी, वाह तुझी दोस्ती मेहरबानी। ओके जनाब अब्दुल रजाक साहब तुम्हें तमाम थैंक्स प्रोग्राम में शिरकत किया है। कहते हैं कि डेडिकेट कंदा से ऐसा मोहम्मद अली कुंभार के यो फौजी सुब्रो सॉन्ग। ओके जनाब अब्दुल रजाक साहब तमाम गुड थैंक्स। आई नजीर खोसवाहिन सोबतपुर बलूचिस्तान से कहते हैं अगर गुब्बारा कभी आपके मुंह पर फट भी जाए तो गुस्सा ना करें क्योंकि वो आप ही थे जिसने उसे बढ़ाकर उसके औकात से बड़ा किया था। कुछ इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जनाब बहुत अच्छी बात की आपने। सोबतपुर बलूचिस्तान से नजीर खोसो साहब। अब्दुल रजाक कहते हैं मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, इजाज कुंभार, हरिपोटा स्टाफ लग

कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, इजाज कुंभार, चलोरी स्टाफ का थैंक यू सो मच तमाम संगत रहो। आईजी का भी दोस्त शामिल शो थो प्रोग्राम में छो तो अभी दोस्त से गड आयो शाम के सते बजे ताई वो शो की नेक्स्ट कॉल चाहूं कॉलर के जनाब अस्सलाम वालेकुम। खालिक लाशारी साहब क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ये बुधायो झलोरी स्टोव पारा किए लगा पिया सब छो तो हाँ भी मुझे मैसेज आया झलोरी का वह भी ठीक ठाक है माशाल्लाह।

0: बनी
1: नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जो मंजूर कई हुई स्पीकर अवेस कादर शाह चयो तो रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो रिथ में चयो वियो तो पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध की सरहदन से भी छेड़छाड़ वाला नुक्ता शामिल आन मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर इन मामले ते बहस कई वे कौमी असेंबली ए सेनेट पिम्प साने बाबत ठहराव यकराव मंजूर करे वरतो साने की शफाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो

अमरीका ईरानी शर्त मञा त आबनाह हुरमज बीहर मुकमल तौर ते खुली वेंदो। परडेही वजीर अब्बास राख्ती चयो त गाल्हियुनि जी बहाली लाइ अमरीका खे एतमाद बहाल करणो पवंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडेही वज़ीर हाकान फैदान सां राब्तो। बेतरफ़न लागापन समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। परडेही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि चार मुल्की परडेही वज़ीरनि जे इजलास बाबति बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। खिते जी सूरतहाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठ कई वई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक जी मुलाक़ात। सिंध जी गैस ऐं तवानाई वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर पारां स्टेटेड ऐं डोरमेंट गैस फील्ड सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो। मुराद अली शाह चयो त सिंध मुल्क में सभ खां वधीक गैस पैदा कंदड़ सूबो आहे। सिंध जे आइनी हक़नि जो एहतराम कयो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त सिंध हुकूमत जी गैस वसीलनि बाबति मौक़िफ़ ऐं तजवीज़नि खे अहमियत ॾियूं था। मसला जल्द हल कया वेंदा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमान को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम उससे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: मुझे और पता नहीं गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: मैं पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ।

0: बहुत सोना दिल रखते हैं और सोनी सोनी सी बातें करते हैं और उन्होंने कहा कि जनाब लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, अगर आप लड़ाइयां करेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आए, अमन शांति के साथ रहें और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहे क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है। तो इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जो कि आपको बहुत चाहते हैं, हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, बस सबसे कह रहे आहे आहे केर के वहीद वफाई आई थिंक
1: वफा अब्दुल
0: भाई। एग्जैक्टली
1: exactly.
0: हाँ जी वहीद वफा साहब, के हाल चाल अथव?
1: शुक्रा शुक्रा अल्लाह जी मेहरबानी आ तां जी आवाज अंदा छोकरा तां बुधा भाई इश्ताक तां जी मिजाज कि आ तां जी टेट जो सत कि आ
0: सब मिजाज सब सत सब ठीक ठाक आहिन तवां जी बुधा केटी शाबेलो कि लगो पियो आ तां जा कम कार कि थालन
1: भलो आ पर हिन वक्त कुछ बोडल जे लपेट में आ माने हाँ कुछ बोडल जी वर बुधा न था तो गुडुआ ते लथो पानी भाग त हाँ हुआ तो
0: पर अमन रखे जेका है डिजास्टर्स का अला साई इन इलाके का बचाए हमेशा खुशहाली रखे ते
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल। वहीद भाई बुधायो तो आज असा के कोई गानो गाए बुधायो यार वडो दिल तो चाहे तो कोई लिस्टर मुझे गानो बुधाए या कोई शेर
1: तो गानो बिल्कुल असा बुधाईंदा पर गलो सही पर मेरे मां टोट को बुधाया तो मास्टर मंजूर जो यार
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: ॾिसो यार मुझे जू कुर्बानियूं धरतीअ में पंधड़ा थो करे तॾहिं सवेर थी वेंदी
0: दर
1: ते बि सॾड़ा थो करे ॾिसो यार मुझे जू कुर्बानियूं धरतीअ में पंधड़ा थो करे।
0: अच्छा इहो यार खे सराहे थो या गिला थो करे त न ईंदो कर निभागो
1: न न इहो सारा
0: अच्छा सराहे थो सही आहे सही आहे। मां चयो शिकायत थो करे त ॾिसो अचे थो भाॻो एॾो टाइम त असां त दर थो बीह रहे बीह थो रहे।
1: मां त हिकिड़ी हैरत कंदो आहियां
0: जी जी
1: मां शहर जेको पंहिंजे शहर खे बि न तव्हांजो सलाम कंदा पर मां हर हिकु फनकार जो मां इसाफ़ जो ॿुधंदो आहे नी मूंखे हैरत ईंदी आहे। मास्टर मंज़ूर पंहिंजो अंदाज़ ॻायो आहे वरी मुख्तार रशीदीअ ॾे अचे त उन पंहिंजो अंदाज़ ॻायो आहे
0: जी जी
1: थोरो सारा फनकारनि जी जला चांडे पंहिंजो अंदाज़ इहो हिकिड़ा इसाफ़ अंतर मां कीअं था कढंदा जला
0: बिल्कुल ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर हिकु जो हिकु डिफरेंट अंदाज़ हूंदो आहे जीअं असां अर्ज़ी हूंदा आहियूं असांजो डिफरेंट अंदाज़ आहे त इहे सिंगर्स बि जेका हूंदा आहिनि हुननि जा डिफरेंट अहसास जज़्बात आवाज़ स्टाइल सभु कुझु अलॻि हूंदो आहे।
1: बिल्कुलु साईं मां तव्हांखे 14 अगस्त ॾाढो ख़ूब ॿुधो पर असांजी ख़ुशि नसीब सां तव्हां कालियूं कुल वचूं ॿिनि कलाकनि में चार काल चइनि कालनि में असांजी काल लॻी न तव्हांखे
0: ॿुधोसीं
1: जेको अॻिलो जुमो गुज़रियो त अहिड़ो कुदरती तव्हां डेली नथा अचो नी
0: हां जी
1: उहो उन जे करे कुझु शायदि मां कम बि हुयो ॾींहं खे थकावट बि मां ॻाल्हि ई भुलिजी वई
0: माना तव्हां असांखे भुलिजी वियो बसि असां तव्हां सां ॻाल्हायूं कोन था।
1: महिरबानी आहे काल लॻी वई असां पंहिंजे प्रोग्राम जा आहियूं पुराणा पांधड़ा
0: माना मां तव्हांखे नाराज़ आहियां हाणे तव्हां मूंखे भुलिजी वियो या ईअं कीअं थिए
1: न न उहो ईअं हुयो त कुझु बोडल जे लपेट में ॾींहं खे जो कमु कयोसीं त वरी असां कुझु
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही आहे सही आहे कोई ॻाल्हि न आहे। अच्छा वफ़ाई साहब वफ़ा साहब मां हिकिड़ो गानो थो प्ले कयां वाह तुंहिंजी दोस्ती रुसवा करे छॾियो फौजिया सुमरो जो असांजे अब्दुल रज़ाक भाउ जी फरमाइशे
1: फौजिया सुमरे जा बेहतरीन कलाम मां पाण ॿुधंदो
0: आहियां
1: उन नगम बेहतरीन हुजे वाह जो ॿुधंदा।
0: त कंहिं जे नाले करणु चाहियो?
1: साईं अॻु में त स्पेशली तव्हांजे नाले
0: थैंक यू
1: तंहिंखां बाद मुंहिंजे भाणी जो रफ़ीक जतो ई मुंहिंजो भाउ आहे भाटियो आया त मुंहिंजो तू तंहिंखां बाद में सोना खान मस्तु ई ॿुधी मां खां अॻ में कॉल करियो मोहम्मद बचल शंबाणी आहे जेके दोस्त ॿुधनि था मुंहिंजे भाणी जे रफ़ीक जते खोड़ सरा सलाम
0: अब्दुल वहीद
1: जते पारां सॼे सत खे सलाम आहे स्पेशली दादर शेख खे खोड़ सरा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वहीद भाई थैंक यू जी जनाब हमारे साथ वफा वहीद फ्रॉम केटी शाह बेलो और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कौन गल कर रहा है तो कितों गल कर रहा है मैनू थोड़ी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है ड्रॉप होगी कॉल पता नहीं कौन थे और आई थिंक जनाब उनके लहजे से बात से पता चल रहा था कि कोई हमारे पंजाबी भाई हैं तो इसलिए मैंने भी उनसे पंजाबी में बात करना शुरू कर दी और उनकी कॉल अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अजीज सलंगी साहब क्या हाल चाल है तांजा सफ़ा सफ़ा सफ़ा मस्त मलंग लगा पिया हूं तव्हां इहो ॿुधायो मीरपुर वारा सभु कीअं
2: आहिनि
0: माशाला माशाला माशाला इहे ई मौज मस्ती में रहो हमेशा ऐं मीरपुर खां तव्हां आया आहियो त तव्हांखे भली कार चऊं था मुंहिंजा प्यारा भाउ मीरपुर वारा भाउ फौजी सुमरो प्ले कयूं था कंहिंजे नाले था करणु चाहियो आचर मरी साहब के भी हथनि सां सलाम असांजा रेगुलर जुमो कीअं ईंदो आहे जुमो त सत ॾींहं बाद ईंदो आहे छह ॾींहं बाद अच्छा माना जुमो न माना रोज कयूं हाय सदके वञा मां पंहिंजे भाउ ते थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ताला असां हिनखे रेगुलर कंदासीं मुंहिंजा भाउ हैलो थैंक यू सो मच मीरपुर वारा भाउ प्यारा प्यारा भाउ तव्हां असांजे प्रोग्राम खे रोज़ ॿुधणु चाहियो था त इंशाल्लाह ताला ज़रूर ईंदासीं तव्हांजे फरमाइश ते अमल कंदासीं अस्सलाम वालेकुम

0: وعليكم السلام.
1: جي جناب كيف اسمك ابني سانقاد؟
0: مهرم علي تامري صاحب.
1: مهرم علي تامري صاحب كيف حال چال؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ مزے میں ہے؟
0: الحمدللہ صحیح دعا
1: مہرم بھا چھا کندا ہے مہرم بھا
0: زمین جو
1: माशाल्लाह माशाल्लाह मोहरम भा फौज सुमरो बुधायण वारो आया कैंजे नाले ता करन चाहो
0: कई नालो तो तमाम दोस्तन जे चंद जी के
1: जी जी थैंक यू अदा पांजो खास कर रख जो मोहरम टामरी साहब मां गानो प्ले कर चुको आया बुधो ही खोल सालन जाए क्यों जी जनाब हम प्ले कर चुके हैं अब्दुल रजाक झलूरी से उन्होंने हमें फरमाइश की थी तो इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जीएफएम 88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: 6:30 PM This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्ष अपनाए आर्ष ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग
2: सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM की आवाज
2: GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज दर्दा रहो

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम इससे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: मामू मुझे छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: माँ मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: तो पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

0: जिस धरती से जुड़ा। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर
2: जिस हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

वरता वया जांच कमेटी वजीर आजम के अॼु शुरूआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वजीर आजम नज़ीर ताड़ चयो त जांच कमेटी अॼु शाम ताईं शुरूआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम खे पेश कंदी। तफ़सीली रिपोर्ट 7 ॾींहनि में साम्हूं ईंदी, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थींदी। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि एफ बी आर में सुधारनि बाबति हफ़्तेवार इजलास। शहबाज़ शरीफ़ पारां टैक्स में सुधारनि वारो कम तय थियल मुदत में मुकमल करण जी हिदायत। टैक्स चोरी इस्म कानूनी कम वज़ीर आज़म सुधारनि जो टीं दौर खां ऑडिट यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त मुल्की तरक़ीअ लाइ टैक्स वारे निज़ाम में सुधारा ज़रूरी आहिनि। सुधारण वारो कम बि तय थियल। सऊदी अरब जे माहौलियात वारे वज़ीर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसन अल फज़लीअ जो जी एच क्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। आई एस पी आर मूजिबि फील्ड मार्शल पाक सऊदी भाइराणनि लाॻापन खे हथी ॾियण ऐं स्ट्रेटजिक भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो इज़हार कयो। सऊदी वज़ीर इलाक़ाई अमन लाइ पाकिस्तान जी मुस्बत किरदार खे साराईंदे ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई। सऊदी वज़ीर फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात खां पहिरीं वज़ीर आज़म सां बि मुलाक़ात कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक सऊदी ऐं तुर्कीअ में थियल मका मुआदे बाद टेई मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि। आज़ाद कश्मीर जे नए चूंडियल वज़ीर आज़म बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गीलानी रियासत जे 17वें वज़ीर आज़म तौर हलफ़ खणी वरितो। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म इफ्तिखार गीलानी चयो आहे त कश्मीर में रोज़गार जा ज़रिया पैदा कया वेंदा, अस्पतालुनि ऐं स्कूलनि खे बहितर बणायो वेंदो। बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गीलानी 30 वोट खणी वज़ीर आज़म चूंडियो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो नेपाली वज़ीर आज़म सां फोन ते राब्तो। बोझ सबबि थियल जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। मुश्किल वक़्त में इंसानी बुनियादनि ते मदद जी बि आछ। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तानी अवाम ऐं हुकूमत मुश्किल वक़्त में नेपाली अवाम ऐं हुकूमत सां हमदर्दीअ जो इज़हार करे थी। नेपाली वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जा थोरा मञीदे चयो त कुदरती आफ़त वक़्त मदद ते पाकिस्तान जा थोराइता आहिनि। रूस कंहिं बि नेटो मेंबर ते हमिलो न कंदो। सीआईए सरबराह जी मॉस्को जे दौरे जो मक़सद बि ख़ासि पैगाम मोकिलण न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जॉन रेडक्लिफ 6 महीने या साल में पंहिंजे रूसी हमनसब सां मुलाक़ात कंदो आहे। संदसि मॉस्को वारे दौरे जो मक़सद ख़ासि पैगाम पहुचाइण न हो। आबनाए हुरमत बाबति रूस जो रवियो मुस्बत हो। ईरान वटि फ़ौजनि खे पघार ॾियण जेतिरा बि पैसा न आहिनि रहिया। आबनाए हुरमत खे बि बारूदी सुरंगनि खां साफ़ करे छॾियो आहे।

ईरान ऐं ओमान विच में आबनाह हुर्मुज़ में वक़्ती रस्तो खोलण ते इतफ़ाक़ थी वियो। राहदारीअ जो हिकड़ो हिसो ईरानी ऐं ॿियो हिसो ओमानी पाणिन मां हूंदो। ॿई मुल्क गॾियल तौर ते जहाज़नि जे अच वञ जो इंतज़ाम ॾिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो त आबनाह हुर्मुज़ जी लंघ जो वाज़े तौर ते तौइन करे छॾियो आहे। अमरीका ईरानी शर्त मञिया त आबनाह हुर्मुज़ ॿीहर मुकमल तौर ते खुली वेंदो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो त ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ अमरीका खे एतमाद बहाल करणो पवंदो। नायब जी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही

मुल्क जी मुलाकात सिंध जी गैस ए तवानाई वारे मामलन ते गालियूं वडे वजीर पारां स्टेटेड एंड डोरमेंट गैस फील्ड सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो हुकूमत जी गैस वसीलन बाबत मौकिफ ए तजवीज़ुनि खे अहमियत ॾियूं था मसला जल्द हल कया वेंदा। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण वफ़ाक़ी हुकूमत खां सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे खे तरजीह ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। शर्जील इना मेमण चयो आहे त कराचीअ खां रोहिड़ी रेलवे ट्रेक वारो मनसूबो अहम आहे, सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे खे बि अहमियत ॾिनी वञे। सिंध जो अवाम डिघे अरसे खां सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जो इंतज़ार करे रहियो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत रिथा ते कम जे टाइम लाइन सूबे खे ॾे। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी, कमीशन पुलिस अहलकारनि एधी ड्राइवर ऐं पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर खे तलब करे वरितो, पहिरीं सेप्टेम्बर ते पेश थियण जी हिदायत। अदालती कमीशन जे पहिरें ॾींहं जी कार्रवाईअ ते मीर रज़ा जो वालिद वालदा ऐं भेण पेश थिया। कमीशन सरबराह सिंध हुकूमत खे पुलिस ऑफिसरनि डॉक्टर्स जी फहिरिस्त ऐं जांच रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत करे छॾी। जस्टिस उमर सयाल चयो त केस बाबति ॼाण ॾींदड़ शख़्स लाइ इनाम जो ऐलान कंदे इश्तिहार अख़बारनि में छापिया वञनि। डीआईजी लाड़कानो नासिर आफ़ताब पठाण बदली, डीआईजी सखर मुक़रर, शिराज नज़ीर अब्बासीअ खे डीआईजी लाड़कानो लॻायो वियो, नोटिफिकेशन जारी। अदील चांडियो एसएसपी ठठो मुक़रर, एसएसपी साजिद अमीर सदोज़ई खे प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची मुक़रर कयो वियो।

चक जे रुस्तुम जे कच्चे वारे इलाइके में कारा इल्ज़ाम हेठ बिठो कतल गोठ चमन सुखपुर में मस्जिद जे पेश इमाम अनीस पहोड़ ऐं औरत नमल सब्जूए के कारा इल्ज़ाम हेठ कतल कयो वियो। पुलिस वाके जी तस्दीक कंदे चयो आहे त वाकियो कारा इल्ज़ाम हेठ पेश आयो आहे। वधीक जांच जारी आहे।

0: मुंहिंजा चार पुट लुड़ी विया आहिनि, हिकिड़ो बि असां पाण लधो आहिनि। मां साईं कारेस टुटुम न आई आहे, न को इहो आयो आहे पंहिंजो कटीम आया आहिनि माल ताणी। हिन माल ताईं राति खां वठी असांजा पंहिंजा दोस्त संग असां मिट माइट लथा पिया आहिनि बाह में, उहो टीम वारो न आहे।
1: चार ॿार असांजा किरिया आहिनि, उन में असां हिकिड़ो पंहिंजी मदद पाण करे असां कढियो आहे, बाक़ी टे ॿार असांजा अञा ताईं लथा आहिनि।
2: कोटली जी वेझो लोडर रक्षा वाह में किरण सबब ॿुडी वियल चइनि ॿारनि मां ॿिन जा लाश हथ, ॿिन जी ॻोल्हा जारी। ॿुडी फौत थियल 13 सालनि जे जुनेद ऐं लाहूती गोपांग जो लाश हथ कयो वियो। वधीक ॿिन ॿारनि जी ॻोल्हा जारी। गुज़िरियल ॾींहुं लोडर रक्षा मीरवा कैनाल में किरण सबब 4 ॿार फौत थी विया हुआ। वारसनि मदद न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो हो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: अप्रैल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: दस तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिर्फ गुलाम की है बादशाह।

0: जा रहे हैं ये मुल्क पे रैम करें, ये साजिश है कुछ लोगों के।
1: 10 सूरे बनेंगे, 15 सूरे बनेंगे, लोग तो यही होंगे ना, कोई आसमान से थोड़ा फरिश्ते ही आएंगे।
2: तालिबा हमेशा कौमी मूवमेंट के मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आपको छोटे यूनिट्स पे जाना होगा, मैनिफेस्टो का भी पार्ट है।
3: सिंध असेंबली जा मेंबर सुमर वाले डी नवन सूबन के मामले ते ऐवान में बहस ला तैयार। पीपुल्स पार्टी जी एमक्यूएम के सिंध के विरांगे वो ख्वाब न दिसण की सलाह। सूबाई वजीर एमपीएस सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एक न पर केतरा भेरा ठहराव मंजूर थी चुका है। सिंध असेंबली एक भेर बीहर ठहराव मंजूर कर वी। नंढड़े अस्पताल न संभाले सकंदड़ सूबो कि संभालींदा। नवन सूबन बाबत फैसलो अवाम जो हों। पीपुल्स पार्टी अवाम से गड है। सिंध विरण की गाल अवाम ही गड न। एमक्यूएम के दोस्तों के बिठाराव की हिमायत करनी घुर्जे। सऊदी अरब के माहौलियात वाले वजीर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसन अल फजली जो जीएचक्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। गैर दिलचस्पी मामलों के ख्याल की डे वठ। आई सागापन के अतिरिक्त भाईवारी के वधिक मजबूत बनाने के कन विच में सहकार वधाने की ख्वाहिश जाहिर कई। चाक सऊदी मुल्क वधिक वेझो आजार गिलानी आज कश्मीर में रोज पैदा कया वेंदा। इतर बनायो इफ्तिखार गिलानी वजीर आजम चूंडियो। वजीर आजम की सदारत हेठ एफबीआर में सुधार बाबत हफ्तेवार इजलास। शहबाज शरीफ पारा टैक्स निजाम में सुधारण वो कम तय थियल मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। टैक्स चोरी स्मगलिंग ए गैर कानूनी कमन में मुलविस मानून खिलाफ कार्रवाई तेज करने जो भी हुक्म। धुर का ऑडिट यकीनी बढ़ाने की हिदायत कन्दे तो मुल्की तरक्की लाए टैक्स वाले निजाम में सुधारा जरूरी आन। सुधारण वो कम भी तय थियल मुद्दत में मुकम्मल कर वे। रूस कें भी नेटो मेंबर से हमलो न कन्द। सीआईए सरबराह की मास्को के दौरे जो मकसद भी खास पैगाम। सिर्फ 6 महीने या साल में पैं रूसी हमन सब समा संदस मास्को वाले दौरे जो मकसद खास पैगाम पहुंचाण न हो। आबना हुरमस बाबत रूस जो रवियो मुस्बत हो। ईरान वट फौजन के पगार दियण जितरा भी पैसा ना हिन रहा। आबना हुरमस के भी बारूदी सुरंगन का साफ कर छो है। ईरान ए ओमान विच में आबना हुरमस में वक्ती रस्तो खोलण ते तफाक थी वयो। राहदारी जो एकड़ो हिस्सो ईरानी ए बियो हिस्सो ओमानी पाणन में हुंदो। बई मुल्क गडियल तौर से जहाजन के अचवन जो इंतजाम दिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसन रजाई आबना हुरमस के लंघ जो वाजे तौर से तोइन कर छो है। अमरीका ईरानी शर्त मना तो आबना हुरमस बीहर मुकम्मल तौर से खुली वेंद। परदेही वजीर अब्बास राखची तो गालन की बहाली लाय अमरीका के एतमाद बहाल करो पवंदो।

0: भारत एक तरफो सिंतास मुआदो खत्म नथो करे सघे मुआदे ते भारत जी हकल एक तरफी कदमन के जंगी डोह समझो वेंदो लंडन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वजीर आजम साखदार चयो तो पाकिस्तानी मैशत मुस्तहकम थी चुकी दीवाल पिणे जो खदशो मुकमल खत्म थी चुको आहे पाकिस्तान पुरअमन ऐं मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहे थो नेपाल में आयल बोड़ के नतीजे में फौतन जो अंग वधी 579 थी वयो 500 सियान समेत 900 जणा बदस्तूर गुम 900 जणन के बचाइण जी दावा नेपाली हुकूमत मूजिब ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे 555 सियान के बि महफ़ूज़ हंध मुंतकिल वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो नेपाली वज़ीर आज़म सां फोन ते राब्तो बोड़ सबबी नुक़सान ते अफ़सोस मुश्किल वक़्त में इंसानी बुनियादनि ते मदद जी ब्याज शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान नेपाली अवाम ऐं हुकूमत सां गॾु आहे नेपाली वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जा थोरा मञीदे दत ते पाकिस्तान जा थोराइता आहियूं
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: से सज महमर थी
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज जीए एफएम की आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज़।